मैं हूँ असमा नूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना। उन्होंने एश्मा आनियन शैम्पू के बारे में बात की। जब मैंने मंगवाया और इस्तेमाल किया, माशाल्लाह उसने मुझे कमाल का रिजल्ट दिया। मैं सब बहन भाइयों को ये मशवरा देती हूँ कि अगर आप लोग अपने बाल मजबूत और सेहतमंद बनाना चाहते हो तो आज ही अपने करीबी दुकानदार से एश्मा आनियन शैम्पू मंगवाए। एश्मा आनियन शैम्पू सेहतमंद और

0: तड़ाई माशे में जी दार तो ये जी पता शापर सी देता शाय उपस्थित थी
1: जनाती से तारखना पर शापर के हमें इश्मा वाशिंग पाउडर उपस्थित थी
0: इश्मा वाशिंग पाउडर मड़ाई में जी मोह कोरता नेशनल और मल्टी नेशनल कपने वाल वाशिंग पाउडर वड़ी भी कुर्श अक्सर गिलार तक की जी दस रंगे सरा प्रोवरे
1: बिल्कुल तारखना दा गिले वे हर वक्त मुताहा कुर्श डाले हो चे कराना में कुर्ता इश्मा वाशिंग पाउडर वडल से रिकड़े दी उस टूल कुर वाला नफाशोल दी
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सर अब इश्मा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वाशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी चे कपड़े सा पुशली को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाखर सजुद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वाशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सा पई पवात लोसीना नखर पवी
0: शाम इस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाए दार तो ये दाओ मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाओ तो दफा बने गल से अंदरून ला की गेट जान से बे गाले पर शोए मार्किट से देश मा मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफिज जहीर से अब सारा उधर से मिला भी जी।

0: हाँ जी, कॉल से मिली प्रोग्राम से बैक टू बैक कॉल्स सवाल प्रोग्राम के मुकड़े दे किसी कॉल बने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सो खबर की किम देना
1: मोहम्मद हसन खबर का मरकज कोरोना
0: मोहम्मद हसन बखेर उगले करकना सही का नाम
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: एशमा कॉस्मेटिक प्रोग्राम की तरफ हर कले भी सही खबर है बिल्कुल सवाल जवाब सवाल में जवाब ही दर्शी
1: सवाल जवाब जी ख्याल यूसुफ अलैहिस्सलाम हो रहा यकूब अलैहिस्सलाम जुड़वा
0: अच्छा जी शाह ठीक शाह जवाब मैं नोट के बाहर के दर्द हुए सही दो डेरा मनाना कॉल को बोले यो जहान मनाना चाहिए प्रोग्राम के देर होता कॉल को डेरा जिया था मनाना

मुस्कुराहटों के लिए खुशियों की आवाज़, आपका अपना रेडियो हर पल आपके पास, तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 करक, जवान रंग अमन।

0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन।
2: अपना मन पसंद रेडियो स्टेशन।
1: रेडियो स्टेशन
2: तो सुनते रहिए 88.4 करक।

Okey, zaman pemandu berbesar. Kanci, zurbatan najis sebesar ini mungkin orang cantik mana produk sih melalui sekor kehati. Or, syadehi lugu. Sehir kena si, amakhiru ke syadehi lugu. Atau tamam produk sih melalui sedih melalui si Mansur jenah si sedang merkiri, Ramzan merkiri sih melalui sih. Atau di mungkin pemandu berani bertelur sih bukan daran, hawa bertelur sih mungkin cantik produk sih melalui khusus sih. Sih kawal sih. Adi ini lewat cerita kabar juga si. सदर प्लाजा अफसर खान प्लाजा अलबदर मार्केट क्षेत्र में लेवेशी ये लेवेशी बर्कशी चार वर्ष हमें लेवेशी इतिहार मार्केट से हमें लेवेशी ये लेवेशी फिल्मली शॉपिंग सेंटर से हमें लेवेशी ये सदर्शन बाबू बाजार से

0: खामोश की ऐसे ने कहा कि जाग रही हो या सो रही हो।
1: अच्छा।
0: मैंने कहा कि जाग रही हूँ।
1: हम्म।
0: तो अभी मैंने सोचा कॉल करती हूँ। पेशावर वाला जो आपने सुनाया शेर, वो बड़ा जबरदस्त था गजल।
1: हम्म।
0: वो बहुत प्यारा गजल था।
1: क्यों आपको समझ, आपको तो समझ नहीं आती।
0: क्यों नहीं आती?
1: पश्तो समझ नहीं आती ना, आप तो उर्दू वो क्या कहते हैं लैंग्वेज है, तो फिर आपको पश्तो कैसे समझ आई?
0: बहुत चीजें ऐसी होती है कि हम बोल नहीं सकते लेकिन समझ पाती है।
1: अच्छा, बोल नहीं सकते समझ सकते हैं।
0: हाँ, क्यों नहीं।
1: सही सही। तो प्रोग्राम में क्या शामिल करना चाहोगी?
0: प्रोग्राम में
1: या मुझसे कुछ सुनोगी?
0: आप सुना दो पहले, फिर बाद में मैं सुना।
1: अच्छा, पहले मैं सुनाऊँ? हमेशा हम ही पहले सुनाते हैं।
0: हाँ, तो आप अच्छे सुनाते हो इसलिए।
1: नहीं, हम कहाँ अच्छे सुना सकते, ये आपके समात अच्छे हैं जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है।
0: हाँ।
1: हम इतने अच्छे नहीं सुना सकते, लेकिन आप लोगों की जो समात है ना सुनने की, वो ठीक है, वो अच्छी है, इसलिए आपको अच्छी लगती।
0: हाँ, ये तो है।
1: ओके जी, जिसे वक्त देता रहा सबक जमानों का, जिसे वक्त देता रहा सबक जमानों का, वही शख्स समझ सका मफहूम इम्तिहानों का। खबर नहीं हवाए कब रुख बदले, बहुत गुरूर न करना बुलंद मकानों का। हक तनकीद तुम्हें है मगर इस शर्त के साथ, हक तनकीद तुम्हें है मगर इस शर्त के साथ, जायजा लेते रहना अपनी भी गरीबानों का। बस इतना ही
0: काफी। सुनाओ।
1: जी जी सुनाओ।
0: सुनो, हम नाराज है तुमसे।
1: हम्म।
0: बहुत मजबूर हो ना तुम।
1: हम्म।
0: मजबूर हो ना
1: तुम। हम्म।
0: हमें तो याद करने का।
1: हम्म।
0: फिर पर बात करने का।
1: हम्म।
0: तुम्हें तो याद करते हैं।
1: हम्म। थोड़ा जोर से पढ़ो। हम्म। थोड़ा ऊंचा पढ़ो। नहीं, आवाज कट रही है, आवाज कट रही है।
0: अब सही है।
1: हाँ हाँ। हम्म। आवाज खराब हो गई है, ठीक है। मुझे कुछ भी नहीं अभी सुनाई देता। नहीं, फिर से सुनाओ जी।
0: चलो।
1: हम्म। जी। ओके जी, वालेकुम सलाम। जी, थैंक यू। ओके, सारा बहुत माजरत के साथ, आपकी आवाज जो है वो खराब हो गई, ठीक है। कभी एतबार उल्फत कभी हमसे बदगुमानी, कभी एतबार उल्फत कभी हमसे बदगुमानी, तेरी ये भी मेहरबानी तेरी वो भी मेहरबानी।

0: Okay, ji, next caller te mukavir kouchi ji misra kale lare sok te sabu shamilavi ji. Assalamu alaikum. Ji, assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam.
0: Ji janab, so kaisa khabar ki kim suna? Ni
1: taraf sambano.
0: Ha sara. Ji ji.
1: Wo ghazal sunati hu.
0: Acha ghazal ke liye dobara call ki. Okay ji, sunaye.
1: Ha. Suno hum naraz hai tujhse.
0: Hmm.
1: होना तुम
0: जी जी
1: बहुत मसरूफ होना तुम हमें तो याद करने का बर्बाद करने का
0: वाह जी वाह
1: तुम्हें तो वक्त ही कर है तुमको याद आते हैं न हम तुमको सताते हैं पर अब तुम माफ रखना तुम हमें न याद करना तुम न याद आएंगे न तुमको यूँ सताएंगे पर जब भी हमको बुलाओगे मिलने आओगे हम तुमको बताएंगे बहुत मशहूर है हम भी बहुत मशरूफ है हम भी हमें भी काम है कितने हमें न ही बुलाओ तुम कि हम नाराज है तुमसे
0: जी जी
1: नाराज है तुमसे
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे
1: चलो एक है कि ये देखते हो आसमां को तो कोई रिश्ता है आसमां में क्या और ये मुझे सेम क्यों नहीं पड़ता किसी शख्स का जहाँ में क्या बस
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत शुक्रिया जी दोबारा कॉल करने के लिए आपकी आवाज़ ख़राब हो गई थी तो आपने दोबारा कॉल किया और गज़ल सुनाई यू जहान मानना थैंक यू सो वेरी मच
1: ओके अल्लाह हाफिज़
0: जी अल्लाह हाफिज़